ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।

हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरुजी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम है, यस्मिन सर्वानी भूतानी आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही

0: और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज्यादा है, गाय के प्रति इतना ज्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं है, तो इनके प्रति ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मतलब वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ओईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मशीन है, जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgressors boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. It's Yoga in Daily Life Foundation. It's it has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: De paise.
2: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahmarishi ji aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahmarishi, P. Thawla, Nagore.
3: नागौर। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख ईट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, शीलता नहीं है, शुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती महाद्वानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं। क्या तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 82-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज जी श्री को तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे, ये सब लीला उस ईश्वर की तू ध्यान।

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्चंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी महाराज। विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी जो

विश्वेश्वरं मोहनं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं रामानुजं संभजे। ब्रह्मानंद सहोदरी श्रुतिमयी सद्वल्लरी पावनी पीयूषां बुद्धिमंथनोद्भवरसा मुल्लासनी माधवी श्रीमद्भागवताख्य धाम बसति राशेश्वर प्रेयसी पंचाध्याय लसत्तनुर्विजयते राशेश्वरी राधिका।

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu Dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरती, पकड़।
1: सो दिस इज लाइक व्हेन विश्व गुरु जी इज विद अस एंड वी टॉलरेट और वी आर रेडी टू सपोर्ट और बेयर एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम।
0: गुरु जी ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है,
1: सो व्हाटएवर द विश्व गुरु जी टोल्ड, गुरु जी गेव यू द mantra, the teachings and all what you have to do,
0: us par pakad rakhna,
1: you have to follow,
0: isko dhirti bolte hain,
1: this is called dhirti,
0: shama,
1: endurance, patience.
0: Koi chhota aadmi agar koi galti kar jata hai to bade aadmi ko उसको क्षमा करना चाहिए, जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम प्राइमरी में है, किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना, नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा।
1: द थर्ड स्टेप इज डू नॉट स्टील, व्हाटएवर मनी थिंग्स और समथिंग यू हैव दे शुड नॉट स्टील।
0: पवित्रता,
1: प्यूरिटी,
0: पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो लाते हैं excuse me, voice, non-base.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because air, because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मनी शुद्ध नहीं होता.
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृतिक क्षमा दमयस्तेयम शोचम मिंद्रिय निग्रहा. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवे. ऐसा खान पान, आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
1: सो वी शुड ईट, ड्रिंक, थिंक, लिसन और व्हाटएवर वी डू शुड बी इन अ सच अ वे दैट आवर लाइफ ग्रोज, दैट वी आर गोइंग अपवर्ड्स इन द अपर ट्रैजेक्टरी.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है, आपका आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो, सत्व श्रुति, तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
1: In Brihadaranyak Upanishad it says, if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: Dhira vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam. Dhira vidya, buddhi, mind. Isko buddhi ko सदुपयोग में लाना चाहिए. थी बनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, थी बनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड. It should be pure, and this happens from the food.
0: Vidya.
1: Knowledge.
0: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं. सा विद्या या विमुक्त ही. जो आपको उलझावे नहीं, सुलझावे, उसका नाम है विद्या.
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू, व्हाट डजंट कवर यू और व्हाट मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री.
0: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं है.
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: Hamare Vedon mein sarvapratham do baat ki shiksha di gayi hai, satyam vado, dharmam chara. Satya bolo, dharma ka acharan karo.
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: Ek

0: कोर्स आपका प्राइमरी का 15 मिनट में पूरा हो गया.
1: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: एक ही आदमी के लिए, एक ही साधक के लिए, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
1: सो फॉर एनी साधका, एनी भक्ता, एनी डिसाइपल, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, ऑल दीज प्राइमरी थिंग्स आर नेसेसरी एज अ बेस.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा अलग नहीं है. एक ही रोड के अलग अलग नाम.
1: सो देर इज ओनली वन रोड विद द डिफरेंट नेम्स. समबडी इज कॉलिंग योगा, समबडी इज कॉलिंग ज्ञान, समबडी इज कॉलिंग दिस और दैट. देयर आर नो डिफरेंट रोड्स.
0: बंबई सूरत रोड प्राइमरी, सूरत बड़ौदा मिडिल, बड़ौदा रतलाम हाई, रतलाम
2: इज टेलिंग द मैप ऑफ इंडिया.
0: एक ही रोड के जैसे बंबई से सूरत, बंबई सूरत रोड नाम हो गया. और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता.
1: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बंबई गोइंग टू सूरत, दिस इज कॉल्ड बंबई सूरत रोड. व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle का अर्थ होता है योग मार्ग. जिस मार्ग का नाम, जितना का मार्ग का नाम योग है, उसको योग बोलते हैं.
1: The middle school is yog.
0: योग में आपके लिए 8 पुस्तक हैं, जिनको आपको ध्यान दे करके पढ़ के पास होना है.
1: सो इन द योगा देयर आर 8 बुक्स इन विच यू हैव टू स्टडी एंड देन पास.
0: यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक. यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति, नियमयति, दंडयति, स्वान, अपने को नियमित करना. उस पुस्तक का नाम है नियम.
1: द बुक विच टेल्स अस हाउ टू कंट्रोल आवर सेल्व्स इज कॉल्ड नियम.
0: नियम, यम अपने को रोकना.
1: यम इज द बुक विच टेल्स अस हाउ टू स्टॉप आवर सेल्व्स.
0: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो नियम हो गया.
1: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स, व्हेन योर
0: नियम मीन्स कानून को पास पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.
1: टू फॉलो द लॉज एंड रूल्स, टू पुट इट इन योर लाइफ, दिस इज कॉल्ड नियम.
0: यम नियम के बाद में आसन है.
1: After that is yam.
0: बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं. हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम. और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन.
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन. And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
0: आसन से आपकी बॉडी शुद्ध होती है।

0: है सॉल्ट एंड स्वीट, समझ गए? प्रत्याहार मनी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कांटेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं।
1: सो प्रत्याहार इज टू विद्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड
0: अभी
1: शॉर्ट एंड
0: हमारे
1: स्वीट।
0: अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम। फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम। फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है।
1: So nowadays in the world it's very famous, the yoga, it's only mentioning just asanas and pranayamas, what is good for the body, but yama and niyama, the rules of outer and inner behavior that nobody tells.
0: आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते।
1: So after the asana and pranayama, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई।
1: So this is my toothpaste, this is my skin
0: ये
1: cleaner,
0: मेरा
1: this
0: च्यवनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है। तो प्रत्याहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया, इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है।
1: So instead of pratyahara, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
2: गुरुजी ये बैठा ना
0: कहाँ आ जाओ, वो हमारा चेला है, वो इनको पता है सबको। तो उसमें ये है, अब इसके बाद में होता है धारणा। धारणा जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं।
1: So Dharana is the next book, fifth book, which says about it's our own capacity, our own capability, and so on.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला है। धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला। ओ भाई
1: So you look,
0: संन्यास
1: what
0: लेगा?
1: means Dharana?
0: नो धारणा।
1: Dharana means actually also concentration. So you look at my the Dolak person if he wants to have sannyasa. So he said no, thank you.
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं।
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified, and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara. You are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो, तुम भी संन्यास ले लो। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नो नो नो नो नो
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi. You also take your 21 generations across this world. I said, no, no, no, no, no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है।
1: So desires in this life, they are not fulfilled for this person, and his concentration towards God, dedication is not there.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है। ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: Before meditation, you need some knowledge.

0: जो है वो ध्यान बिजनेस बन गया।
1: दिस नॉलेज बिकेम नाउ बिजनेस.
0: आप वहां गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है। लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make it's like a type of business. But before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: So if I tell you, please take the money from me, and then I give you 5, 10, 20, 50, 100, or 500 rupees, which one you will take?
0: अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: From all of
0: 500
1: this,
0: का ना, 500 का,
1: you will take
0: 500 का,
1: 500.
0: ठीक है ना?
2: 2000 का,
0: 2000 का बंद कर दिया मोदी ने यार, 2000 दे दे, 200 का नहीं। कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी, नहीं
1: So
0: लेगा क्या?
1: yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो
1: Now we are
0: अगेन हैंड, यस।
1: now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती है।
1: So you can do ध्यान which when you value something really much,
0: यम
1: a lot.
0: लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्तोभि दुःखेन गुरुणा न विचालयेत्। तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व तो होता है, उसी को आदमी याद करता है।
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका,
1: You remember.
0: आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है। अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व तो आपकी लाइफ में ज़्यादा है।
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के
1: want them.
0: जीवन में परिवार होता, संसार होता, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता है,
1: There is a
0: क्योंकि
1: family.
0: गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है।
1: The for any human, the life, the family, and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि। हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था, दिल्ली में, हाँ दिल्ली में समाधि सिस्टर है। समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कांटेक्ट है, अट्रैक्शन कांटेक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है, केवल केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते हैं।
1: Samadhi is when you feel only yourself, there is no connection with your body, there is no connection with this world, you have connection only with yourself.
0: हमारे विश्वगुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में 2 प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प।
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: Sabikalp samadhi usko kehte hain jahan par sadhak pakka hai aur usko upar uthane ka sadhan bhi sachcha hai aur jahan ki uska god jo usko pana hai wo bhi uski samajh mein hai isko bolte hain sabikalp samadhi.
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
0: Iske baad mein Nirvikalp Samadhi hai, jahan par na to shishya rehta hai, na guru rehta hai, ye dono God mein mil karke God ho jate hain. Aham Brahmasmi.
1: So in Nirvikalpa, there is neither disciple, there is no guru. They both merge into the God. Aham Brahmasmi, I am Brahma.
0: Ye ho gayi. Ab 12th class ki, 16th class tak bhag to nahi jaoge.
1: So this is 12th class.
0: Ab 12th class kya hai? Bhakti. Jisko hum bhakti kehte hain.
1: So 12th class is bhakti.
0: Bhakti mein, bhakti ke course mein, 9 पुस्तके नो.
1: In the course of bhakti there are 9 books.
0: नो पुस्तके. बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना. नहीं, हमने सुनना चाहते.
1: So first
0: श्रवण भक्ति.
1: So first is listening. So listen only what Vishwa Guruji says, nothing else.
0: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो. ये कीर्तन है.
1: कीर्तन और रिमेम्बरिंग इज दैट यू रिमेम्बर ओनली द वर्ड्स ऑफ विश्व गुरु जी, नथिंग एल्स.
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं. ये स्मरण भक्ति है.
1: रिमेम्बरिंग द स्मरण भक्ति इज व्हेन यू remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
0: पूजा सम पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की. दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
1: सो इफ यू डू सम पूजा, इफ यू डू सम सेरेमोनी, डू द सेरेमोनी फॉर गॉड एंड गुरु. इफ यू फॉलो समबडी, फॉलो गुरु एंड गॉड, बिकॉज अदरवाइज यू कैन गेट लॉस्ट.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं.
1: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called Vandana. This next
0: दास्य, सेवक, शिष्य, उसको दास दास्य भक्ति कहा गया है.
1: नेक्स्ट वन इज सर्विंग, टू सर्व द गुरु एंड गॉड.
0: दास, अपना अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं.
1: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू renounce all of your I, all of your egoism, and then you dedicate your life to the service of the Guru.
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर गॉड, भगवान, गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
1: Sakha Bhakti is the next step, is when you believe and trust your guru so much that he also can become like your friend.
0: Hamare Sanatan Dharma Vedic Marg Bhakti Marg me dhire dhire dhire dhire Arjun jab Krishna ke nazdik gaye to Bhagwan ne unko phir das ne rehne diya, sevak ne rehne diya, unko sakha bana diya, sakha mitra.
1: So like friend. when Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
0: Iske baad mein atma nivedan bhakti aati hai. Bolo, Maharaj ji, ab main aapke saath hi kal subhere chala chalunga. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया इसको कहते आत्मनिवेदन
1: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग आई विल गो विद यू व्हेरेवर यू वांट
0: वो आत्मनिवेदन है आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं एंट्री चाहते हैं और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं गॉड रहते हैं
1: सो इट्स अ रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग
0: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए वो क्या है ज्ञान की भूमिका
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one, or introduction to knowledge.
0: उसमें सात पुस्तकें हैं. उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई. Seven books. Seven books उसमें हैं. पहली books क्या है? सुविच्छा. क्या है भैया? सुविच्छा. सुविच्छा क्या है? बोलो, गुरुजी. अब मैं आपके पास ही रहूंगा रह लेना हम कहां मना
1: फर्स्ट बुक इज इच्छा और द ओन डिजायर एंड यू से गुरुदेव आई वांट टू लिव विद यू
0: अच्छा अब आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं अच्छा अब बोलो गुरुजी
1: गुरुजी
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे ले ले संन्यास
1: The second one is oh Guruji I think the same like you and Guruji says okay then take sannyasa
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है उसको कहते हैं विचारणा उसको क्या बोलते हैं
1: विचारणा
0: उसको विचारणा बोलते हैं
1: विचारणा मींस थिंकिंग इट्स लाइक व्हेन योर थॉट्स एंड गुरुस थॉट्स आर इक्वल योर थिंकिंग लाइक योर गुरु
0: तन मानसा इसके बाद में जो है पुस्तक है तन मानसा गुरु से जब विचार मिलता है तो जैसे बड़ी टंकी में से पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है इसलिए उसको तन मानसा बोलते हैं यानी कनेक्शन बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन
1: सो द नेक्स्ट वन इज तन मानसा व्हेन द गुरु द नॉलेज ऑफ द गुरु स्लोली स्टार्ट्स टू बी ट्रांसफर टू द स्मॉल पॉइंट ऑफ शिष्य ऑफ डिसिपल
0: सत्वापत्ति अब चतुर्थी जो है ज्ञान भूमि सुविच्छा स्यात् प्रथमा समुदायता विचारणा द्वितीय स्यात् तृतीया तन्मानसा सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात् पंचमा संसात्मका पदार्थ भावनी षष्ठी सप्तमी त्रियगास्मृतम् तो चौथी जो भूमिका है चौथी पुस्तक है उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता एक आकार एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती है, उसको सत्वापत्ति बोलते हैं.
1: सत्वापत्ति इज द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इन गुरु एंड डिसिपल देयर इज नो डिफरेंस इन देयर थिंकिंग एंड एवरीथिंग.
0: पदार्थाभावनी कहते हैं, पदार्थाभावनी. जैसे आपको चाय याद ही नहीं आवे, कॉफी याद ही नहीं आवे, चटनी याद ही नहीं आवे, रसगुल्ला याद ही नहीं आवे, आइसक्रीम, फिर 15-15 इंजेक्शन.
1: सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू इवन डोंट रिमेम्बर, यू नो, नाइदर एनी स्वीट्स और एनीथिंग, एनी फूड यू लाइक, देयर इज नथिंग देयर.
0: पदार्थाभावनी का अर्थ यह है कि आपके सामने स्टोन हो और आपके पास में जो है गोल्ड हो, इस दोनों को आप बराबर समझे, इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं.
1: पदार्थ अभाव, the detachment from the any things is like you can have a stone or you can have a gold, for you this is equal.
0: नहीं, पहले असंशक्ति. असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति.
1: असंशक्ति इज व्हेन यू डोंट थिंक एंड देन यू गो बैक टू योर फैमिली, टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन.
0: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा.
1: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
0: Padarthabhavani, jahan sona, mitti barabar lage, koi bhi upalabdhi, koi bhi prapti, sansar sambandhi, jo apne ko prabhavit nahi karti ho, usko shastra ne asanshakti kaha.
1: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
0: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा, और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं. आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर वो क्या ना बोलते उसको,
1: सांप, सांप, स्नेक,
0: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे.
1: सो लाइक इन द इन भागवत देयर इज दिस कर्स ऑफ किंग.
0: इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस न हो, डरने लगे. और कृष्ण भगवान ने कहा, नैनम छिंदंति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदंती आपो, न शोषयति मार्ग. आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है वो भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है. ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी. उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं.
1: So this is that book Padarthabhav. There is no fear of snakes, there is no fear of death, there is no fear that the fire will burn you, you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the highest form.
0: Turiya avastha usko kehte hain jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho, और आपकी उसके प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो, तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं.
1: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस और द माइंड स्टेट व्हेन यू हैव एनीथिंग अराउंड यू एंड देन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क इन दैट.
0: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरु जी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए, और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया.
1: सो इन आवर लाइव्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू पास ऑल दिस टेस्ट एंड वी हैव टू कन्विंस द गुरु एंड गॉड that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success, we passed, and we should successfully pass all Vishwa Guruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
0: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति.
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय. देवदी देव देवेश्वर महादेव की जय. इंद्रदान सम्राट महाराज नंजी भगवान की जय. राजगुरु महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शोकनंद भारती जी महाराज की जय.

ॐ कारबिन्दुसंयुक्तम् नित्यदायन्ति योगिना काम दम मोक्षदम चैव ॐकाराय नमो नमः।

गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वद्धि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सत्।

हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनुपश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा प्रेम करुणा दया यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ओईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य स्वीदनम।

0: ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहना है भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
3: In rupees?
1: Yes.
3: Thank you. Ke dollar?
1: Did I say?
3: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, नेपाल के लिए। तो ब्रह्म ऋषि जी आइए आप, एंड प्लीज sing one bhajan, darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lalji, Brahma Rishi, P. Thamla, Nagor.
1: Nagor. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जून के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जून बताइए वो मानव तन है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोड़ है। 4 लाख मान का जोड़ के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, शीलता नहीं है, शुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर क्या? जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरो। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनके शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि मैं महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे, ये सब लीला उस ईश्वर की तू ध्यान।

0: भगवान
1: की जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

दीप नारायण भगवान की, देवपुरी समादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। इन साधना टू क्रिएट सात्विक वृत्ति,

0: नारायणम् ॐ नमो श्री प्रभु दीप नारायण श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की ओम शांति शांति शांति। वी आर इन ब्यूटीफुल पार्क
1: सेफ पार्क बाबा
0: वी आर इन द फॉरेस्ट We are in the lap of the Mother Nature. We are every year enjoying under this beautiful trees.
1: Minden évben boldogok vagyunk itt a fák alatt.
0: And I think our trees are also waiting, looking forward our coming here.
1: Azt gondolom, hogy a fáink is már várják a jövetelünket.
0: I think such a good air, good prana is rare.

0: गुरुजी की जय। श्री सियालकपुरी जी महादेवा की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री हिंदू धर्म सम्राट श्री परहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।

अलख पुरीशा महादेव परम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन।

0: राधे भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेव की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरुदेव की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: You do it, Puspa. One bhajan. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

0: जय। राजे भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

लक्ष्मी बीरबाई की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज की आनंद की जय, कृष्ण कन्हैयालाल की जय।

0: आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी
1: की जय।
0: देवदि देवम श्री देवपुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

शिष्यालजी राम जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज की आनंद की जय। सत गुरुदेव की जय।

बोले श्री प्रणाम भगवान की जय। श्री देवपुरी समादेव की जय। श्री रेवत सिंह जी की जय।